0: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
1: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
0: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
1: गारंटेड
0: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: साउथ हॉल ट्रेवल
1: फोन 02085748410।
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: From Tamworth to Albury, Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands. Listen back to your favourite shows by logging on to leicaradio.com and selecting Midlands or the mobile app. Raj Badden drives Leicester home with Drive at 4 p.m. Leica.

मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कौन कहा।

आहत जुग जुग एको वेश उगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवर।

जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के

0: Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months. Dubai is the place. 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting. Danube 11-11, Danube
1: Properties. हमारी रक्षक है वो
2: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट
3: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है कौन कर रहा है ये
2: मिस्ट्री फैंटेसी एक्शन द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमाज फ्राइडे 25th सितंबर फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम

0: श्रीलंकावित अयोध्या अयोध्या विद काशी द गोल्डन टेम्पल अमृतसर एंड मोर
1: बुक बिफोर द 31st ऑफ अक्टूबर एंड गेट 150 पाउंड्स ऑफ कैलाश और 100 पाउंड्स ऑफ एनी अदर यात्रा टूर
0: ऑल्सो एक्सप्लोर 2026 क्रूजेज
1: फ्रॉम अलास्का टू द कैरेबियन द मेडिटेरेनियन जापान एंड कोरिया विजिट अस एट 5 मिल्टन रोड लेस्टर और कॉल सिटी बॉन्ड ट्रैवल ऑन 01162167225 वेयर एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: व्हेन यू गो अब्रॉड एवरीवन नोज द बेस्ट वे टू मेक योरसेल्फ अंडरस्टूड इज टू से एवरीथिंग इन इंग्लिश but louder.
3: Four beers, please, garçon!
2: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
4: Breakfast with Deep Roger.

0: भाई जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन, मैनचेस्टर एंड मिडलैंड्स. मेरा नाम है अश्विनी, आई एम सिटिंग इन फॉर ऋतु टुडे ओनली. सो आज के ही दिन, टुडे ओनली, हाँ बिल्कुल बताना पड़ेगा कि आज के ही दिन हूँ मैं आपके साथ में. तो कल भी हम मिली थी सुबह 10 से 1 बजे तक, और आज भी 3 घंटे मस्ती मजाक गपशप इंटरेक्शन. पूछे आप सबसे कैसे हैं आप सब, बढ़िया है ना. संडे मॉर्निंग, जी हाँ, आप सभी ने ट्यून इन किया है आप सभी का फैमिली वाला म्यूजिकल रेडियो, एंड आपका साथ देने में यहाँ पे आ गई हूँ. तो हमेशा की तरह अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है, आइए सारे के सारे प्यारे लिसनर्स अपनी अपनी अटेंडेंस लगवाइए. व्हाट्सएप नंबर दिया गया है बस और बस इसी के लिए. हमेशा की तरह एक सवाल, सेकेंड आवर में जोड़ी नंबर 1 एंड थर्ड आवर में 3 शब्दों वाला गाना कौन सा होगा, गाना जरूर पूछेंगे आप सबसे. असाइनमेंट होगा, बिल्कुल होगा, एंड असाइनमेंट की शुरुआत होती है अब. संडे 20 ऑफ सितंबर, सितंबर के केवल 10 दिन बाकी हो गए, बस 10 दिन बाकी हैं. तो ये समय बीत रहा है और आप और हम साथ में यहाँ पे म्यूजिकल जर्नी एंजॉय कर रहे हैं. पहले दो गीतों के हाथ में आते से एक तो ढोल बजवा दिया, तो 90s वाले बच्चे खुश हो गए, 80s वाले बच्चे खुश हो गए, एंड 70s 60s, हाँ जी हाँ जी, सारे सारे बच्चे खुश होने वाले हैं. क्योंकि किसी ने कल मुझे कहा, हाँ हाँ दादी अम्मा, 60s वाले बच्चे, 70s वाले बच्चे, कभी तो जिंदगी के किसी मोड़ पे बच्चे रहे होंगे ना, बस वही इसीलिए कह दिया बच्चे, क्योंकि उस एरा में शायद आप बच्चे रहे होंगे और आप बड़े बन रहे होंगे. चलिए आज की असाइनमेंट, सिर्फ गपशप चाहिए, गाने वाने भी सुनना है ना. ओके, तो आज का असाइनमेंट, बचपन में लगता था कि बड़े हो जाए, बड़े हो गए तो बचपना याद आता है. एंड हम सभी बड़े बन के ऐसे कुछ करेंगे ऐसे हम सोचते रहते थे, पर बड़े बन जाते हैं तो फिर भी छोटेपन की जो चीज़ें होती हैं, बचपन की जो चीज़ें होती हैं, वो हम कंटिन्यू करते हैं. ग्रोन अप एडल्ट होने के बावजूद एक चीज़ जो मैं बड़ी शिद्दत से करती हूँ, एंड दैट इज़ पराठा रोल करके खाने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि मेरी आई जो है अचार का जो मसाला हुआ करता था वो पराठे पे लगा के उसके ऊपर हल्का सा ऑयल, उसका रोल बना के हमको देती थी. सो वेन एवर आई ईट पराठा आई रिमेंबर दैट. आई नो कल हमने चाय पे भी बात की थी, सो यस, चाय पराठा इज़ माई फेवरेट कॉम्बिनेशन. अच्छा होता क्या है कि लोग जीने के लिए खाते हैं और मैं खाने के लिए जीती हूँ, बस इतना ही फ़र्क है. तो बताइए फटाफट, बचपन की जो चीज़ें अभी भी चल रही हैं, कितने भी बड़े आप हो गए हों, लेकिन नहीं यार वो सब चीज़ें ना रहेंगी साथ में, बताइए जल्दी जल्दी. एंड वॉल्यूम अप रखिए, क्योंकि प्लेलिस्ट जो लगे ना आज आप तो उफ आह वाओ यही बोलने वाले हो.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 127 इंडियन रुपी 80 पैसे. And don't forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: We hit
3: Leica Radio.
4: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
5: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
6: Hamari rakshak hai wo.
7: Balaji Telefilms presents The One, Force of the Forest.
8: Mujhe jo ajeeb si cheeze dikhai de rahi hai un sab ka matlab kya hai, kaun kar raha hai ye?
7: Mystery, fantasy, action. The One, starring Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia, in cinemas Friday 25th September. For UK release details follow Bakrania Media on Instagram.
9: Birmingham, get ready as Surrenderella is back for 2026. Rivco Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Crescent Theatre Birmingham Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October. With dance floor bangers by the hitmaker PBN, Surrenderella is guaranteed Desi Panto fun for all the family. And with tickets from only £15, click rivcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Radio partner, Leica Radio.
2: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
4: London, are you ready? Raghavendra presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
3: Dil ne ye kaha hai dil se bol chudiya.
4: One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
10: Dubai ma property kharidwani tamari safar have Leicester thi shuru thai che.
11: Hello everyone, this is Rizwan Sajan, founder and chairman of Danube Properties. Ane ame laavi riya che Dubai Property Expo Marriott Hotel Leicester ma 26 27 September ma.
10: Pots Real Estate tamne aamantrit kare che Danube Properties sathe Dubai Property Expo ma. Marriott Hotel Smithway Leicester, LE19 1SW, 26 ane 27 September saware 10 thi raatre 8 vagya sudhi. Jano Greens, Breeze ane Sharuk's vishe. Properties 190000 pound थी, बुकिंग मात्र 5000 पाउंड थी. दुबई नी मफत फ्लाईआउट ऑफर्स विषय पूछो. दुबई नी तमारी सफर अहीं थी शुरू थाई छे. शर्तो लागू.
2: It's back, it's bigger and better.
4: ZTV and Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival.
2: Powered by Ram Jewelers and associated with UK Management College.
4: Join us on Sunday the 1st of November from 12 p.m. up until 8 p.m. at the Ram Garia Centre in Leicester. With shopping, food, entertainment and plenty more. It's a Diwali celebration you won't want to miss.
2: See you there. Supported by Disha Premium, travel partner, Home and Away Holidays, exclusive charity partner, Godharmic.
4: For store bookings, call 07803-240580.
2: Or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
12: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
1: From West Brom to Sparkhill, Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands, Leica Radio Network. Broadcasting across the UK with Asian
13: Leica Gold. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
14: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com. मिला लेंगे घड़ियां एक बार देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स नियरली 28 मिनट्स पास्ट 10, 10:28. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन मिडलैंड्स एंड मैनचेस्टर. मेरा नाम है अश्विनी. आई एम सिटिंग इन फॉर रितु टुडे. आई नो सरप्राइज राइट. लेकिन अगले सप्ताह हमारी रितु जी वापस आ जाएंगी आपका मनोरंजन करने के लिए. मैं केवल कल और आज के दिन आपका साथ निभा रही हूँ. आई एम रियली हैप्पी कि आप सभी जो है ये प्लेलिस्ट एंजॉय कर रहे हैं. पर साथ में ये भी बता दें कि फाइनल फ्यू डेज टू गो टू द दिवाली स्टोरी ब्रॉट टू यू बाय सनातन इवेंट्स एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क. इट टेक्स प्लेस एट ओम वैमली अरेना. 27 सितंबर को होने वाला है ये प्रोग्राम. एंड जाके जरूर देखिएगा. 4:30 द डोर्स विल ओपन विद अ स्टूडेंट प्री शो फ्रॉम 5 PM टू 5:45 PM एंड द मेन परफॉर्मेंस शाम 6:15 से रात 9:30 तक रहेगा. टिकट्स अवेलेबल है www.diwalistory.com पे. एंड नेक्स्ट ट्रैक के लिए प्लीज वॉल्यूम अप कर लीजिए.
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं ये चांद है या तुम्हारा कंगन सितारे हैं या तुम्हारा आंचल हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो कहीं नहीं हो मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो यही कहीं

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत अब दिल में यही बात इधर भी है

0: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: पता है अच्छे गाने प्ले करने का फायदा क्या होता है कि जो साइलेंट लिसनर्स होते हैं ना वो भी आके कहते हैं क्या बात है मजा आ गया. तो ऐसे आई प्रॉमिस यू ऑल कि ये पूरे 3 घंटे वॉल्यूम अप रखिएगा एंड आई एम श्योर आज आपके घर के लोग कहेंगे कि क्या बात है भाई, मतलब हमेशा ही तुम लाइका गोल्ड सुनते हो और इतने खुश रहते हो. आज की संडे कुछ स्पेशल है क्या ना, आज की 20 तारीख है और अश्विनी ने हमारा साथ निभाया था जी. तो प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है और वैसा भी हो जाता है. तो ऐसा क्या हुआ और वैसा क्या हुआ, तो ये बात तो खैर अभी काफ़ी समय पहले की है. 2014 में ऐसा हुआ था, 2014 में चाइना में एक आदमी ने अपने प्यार से हाँ बुलवाने के लिए, उसे पटाने के लिए, उसे प्रपोज करने के लिए 99 आईफोन 6 लिए, हार्ट शेप में उसे अरेंज किया, जायंट हार्ट शेप उन 99 फोन्स को रख के बनाया और उसे प्रपोज किया. अब कोई लड़की होती तो क्या करती, 99 फोन्स लेके बेच देती ना. लेकिन इस लड़की ने सीधे बेचारे को मना किया और वहाँ से चली गई. सोचिए क्या क्या हुआ होगा उस इंसान का. रिजेक्शंस, यस आई विल बी टॉकिंग अबाउट रिजेक्शंस, तभी तो मैंने इस टॉपिक पे बात की है. रिजेक्शंस जो हैं वो बहुत कठिन होते हैं लेने के लिए हम सभी के लिए. और रिजेक्शन केवल प्यार में नहीं होता है, रोज़मर्रा की लाइफ में भी होता है, छोटी छोटी चीज़ों से रिजेक्शंस. एंड उससे हमें अपना वैलिडेशंस चाहिए ना, मत कीजिए, इट्स ओके. व्हेन समथिंग इज़ मेंट फॉर यू वो आप तक पहुंच ही जाएगा, है ना. सो पहले भी हम लाइफ थियोरीज में, मैं आप सबको जब शाम में मैं आती थी शोज़ में तो आपको बता चुकी हूँ कि हम लोगों ने बहुत सारे मुद्दों पर बात की है. लेकिन रिजेक्शन हैंडल करना हम ह्यूमंस के लिए ना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है. सामने वाले पे हम अपना एंगर, अपना रोष दिखाते हैं, लेकिन सोचिए समझिए कि हर किसी के लिए कुछ ना कुछ उस रिजेक्शन में छुपा होता है. आप अपने रिजेक्शन के साथ में कैसे डील करते हैं ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. हम अपने आप को जो फीड करते हैं ना मेंटली, वो स्टोरी जो अंदर चलती रहती है वो स्टोरी सिर्फ हमारी होती है. एंड ब्रेन जो बताता है कि ये सही था वो गलत था, होता है, यस वी आर ह्यूमंस. लेकिन अपने आप के लिए ऐसी स्टोरी बनाइए जो स्टोरी सुन के आप खुश हो जाए ना कि दुखी हो. तो कौन सी स्टोरी सुना रहे हो अपने आप को?
2: Laika Radio. The Ritu Sharma Show. Holiday featuring classics non-stop with Ritu Sharma on Laika Radio.
1: Southall Travel is known for its competitive holiday deals to Dubai. Contact Southall Travel today on 020-8574-8410. Southall Travel is at all protected.
2: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Laika Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Laika Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows or log on to laikaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@laikaradio.com or you can advertise on the Laika Radio Network by emailing sales@laikamedia.co.uk. Is Ritu Sharma. One performer.
1: Countless personalities.
2: A whole universe of entertainment.
3: Sunil Grover, live UK Tour 2026.
2: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
3: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabhi to brand new surprises, experience Sunil Grover live on stage in the UK.
2: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
3: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
2: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Laika Radio Network.
4: For 15 years, Jannan has been part of your story, across generations, across cultures, across every style, for everyday moments, special occasions, celebrations and new beginnings, because style has no age, no background and no boundaries. 15 years of Jannan, for you, for us, for everyone. The Jannan and J. Dot anniversary sale, up to 70% off, starts on September the 25th online and on the 26th of September in stores nationwide.

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: 1 pound ke badle aapko milenge 128.52 Indian rupee, 86.42 Afghan Afghani, 371.4 Pakistani rupee, 164.77 Bangladeshi taka, 442.95 Sri Lankan rupee, 173.48 Kenyan shilling, 1.33 US dollars, 63.74 Mauritian rupee.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. L-Y-C-A. This is LEICA. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LEICA Radio.
1: Gold is currently trading at £105.11 per gram.
0: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester or call 0116-266-4278.
1: चलिए मिला लेंगे घड़ियां देखते हैं टाइम कितना हुआ इट्स 49 मिनट्स पास्ट 10 आप सभी ने ट्यून इन किया है LEICA गोल्ड रेडियो इन लंदन मैनचेस्टर एंड मिडलैंड्स मेरा नाम है अश्विनी आई एम सिटिंग इन फॉर रितु टुडे सेकंड आवर में हिट जोड़ी जो है जोड़ी नंबर 1 उसके बारे में बात होगी थर्ड आवर में थ्री वर्ड्स वाला गाना कौन से लेके आई हूँ उसके बारे में भी बात होगी मस्ती मजा गपशप इंटरेक्शन चल रहा है आप लोगों के बैक टू बैक मैसेजेस आ रहे हैं हर एक गीत पे जो उफ आहा आ रहा है बड़ा मजा आता है नेक्स्ट ट्रैक जो आपको सुना रही हूँ वो है आए दिन बहार के 1966 में ये गीत नहीं ये फिल्म रिलीज हुई थी लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ में ये कली जब तलक पूरी कोशिश होती है कि सारी वेरिएशन आपके लिए लेके आए सारे कंपोजर्स और सारे के सारे सिंगर्स भी जो हैं एक शो में कवर करें इतना वास्ट सिलेक्शन है हमारे पास में 3 घंटे कभी कभी कम लगते हैं लेकिन एज आई सेड की कोशिश जारी है कि आप सबका मनोरंजन करते चलें ओके सेंड मी पिक्चर्स फटाफट क्या बनाए भाई आज किचन में ब्रेकफास्ट में क्या हुआ आज कोई जलाने नहीं आओगे मुझे नहीं भेजोगे फोटोज चलते हैं आकर गीत की तरफ
0: LEICA Radio Network LEICA Radio
3: This part of the show is brought to you by Anupama every day at 7:30 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
5: द बॉय इज एन अपॉर्चुनिटी सो नाउ बी पार्ट ऑफ इट क्रिएट wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
6: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
7: Dubai is the place. 11,
6: 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
7: Danube 11, 11. Danube Properties. Danube 11, 11.
6: London, get ready for an unforgettable night.
5: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
6: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
5: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
6: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
5: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
6: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner LEICA Radio Network. Celebrate Diwali with Chalo Let's Go and Chai Chopal. Diwali Gala 2026.
8: Saturday 31st October at the Conference Suite West Bromwich. Enjoy a vegetarian feast, live entertainment and family fun.
6: Adults £30. Children aged 5 to 12 just £15. And under 5s go free.
8: Book now at diwaligala2026.eventbrite.co.uk. For sponsorship, call Rakesh on 07436 594 323.
6: Sponsored by Terence Duffy and Diamond Heaven. Radio partner LEICA Radio.
9: लेस्टर फैल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन कनिश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फैल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फैल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 पाउंड्स सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 केजी सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 से शुरू और हर्ज़मैन बटर घी 20 केजी सिर्फ 10.99।
10: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइज 10 स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE1 2JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE5 4UN।
11: 4 स्टार्स 1 स्टेज 1 डेट जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड्स फीचरिंग एक्टर संजय कपूर, एक्टर अफताब शिवदसानी, प्लेबैक सिंगर अमन त्रिका एंड सिंगर मयूरी पटालिया। Sunday the 27th of September at De Montfort Hall, Leicester from 7pm. Tickets from £20. Book now at demontforthall.co.uk or call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
12: Hi, I'm Kajal from Leica Radio. Fancy owning a property in Dubai? Well, your Dubai property journey could start right here in Leicester. Join me live at the Dubai Property Expo with Pods Real Estate and the new properties at the Marriott Hotel in Leicester on September 26th and 27th from 10am till 8pm. I'll be there live on Saturday the 26th from 1pm till 4pm. So come down, say hello and discover Greens, Breeze and Shahrukhs with properties from £190,000 and bookings from just £5,000. Plus, ask about free flyout offers to Dubai. Terms and conditions apply. Come and join me. Your Dubai property journey starts here.
13: Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows. Across the Leica Radio network, this is Ritu Sharma. Are you listening? Leica Radio is now available across Wolverhampton on DAB.

0: LaikaRadio.com, or you can advertise on the Laika Radio Network by emailing sales@laikamedia.co.uk. Laika Radio Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the
1: world. आज लंदन में सूर्य देवता उनके मर्जी मुताबिक आएंगे कभी जाएंगे, तो सनी इंटरवल्स हैं, हल्की फुल्की हवा है, 20 मैक्सिमम मिनिमम 9, मिडलैंड्स का जो वेदर है, टेम्परेचर है हल्के फुल्के बादल, हल्की फुल्की हवा, 8 डिग्री टेम्परेचर. मैनचेस्टर में भी सेम लंदन जैसे हाल रहने वाले हैं, हल्के फुल्के सनी इंटरवल्स, हल्की फुल्की हवा, 17 डिग्री मैक्सिमम मिनिमम 9.
0: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
2: Ye hai
0: Laika Radio. Ritu Sharma.
1: जी हाँ, ये है Laika Gold and मेरा नाम है अश्विनी. I'm sitting in for Ritu Sharma. Second hour hit जोड़ी के बारे में बात करेंगे. Amazing playlist lined up है. Back to back दो गीत, उसके बाद हमारी मस्ती मजा गपशप यहीं पे. Volume रखिए आप.
0: Laika
2: Radio.
0: Let's return to the biggest hits back to back. This is Laika Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Laika Radio mobile app and listen wherever you are in the world. The Ritu Sharma Show, featuring classics non-stop with Ritu Sharma on Laika Radio.

0: Welcome, this is the second hour of mid-morning show. My name is Ashwini. I'm sitting in for Ritu today. Achha, sachi batao. कितने लोगों ने ये लास्ट पिट पे डांस किया ये जबर ये लाजुनो को आई लव द मस्ती व्हेन किशोर कुमार जी के गीत हम प्ले करते हैं जैसे जय जय शिवशंकर एंड राफ्ता राफ्ता सो मेनी ट्रैक्स पड़ोसन के गीत मैं यहाँ पे सुपर डुपर डांस करती रहती हूँ ओके एंड ऑब्वियसली आई रिकॉर्ड दैट एंड आई पुट ऑन माय इंस्टाग्राम एज वेल और हमारे लाइका गोल्ड के इंस्टाग्राम पे भी आपको हमारी छोटी छोटी क्लिप्स दिखती हैं माय इंस्टाग्राम इज रेडियो वाली अश्विनी तो फुल ऑन मजा मस्ती चलता है मेरा तो स्टूडियो में एक तो डांटने के लिए मम्मी नहीं है पापा नहीं है हस्बैंड नहीं है बच्चे नहीं है कि इतने बड़े वॉल्यूम में क्यों तुम गाने सुन रही हो सो जितने भी लोग गाने सुन रहे हैं मेरा एक तो जो मैंने प्रॉमिस किया है कि आप लोगों को सारे के सारे फैंटास्टिक ट्रैक्स मैं सुनाने वाली हूँ तो वो प्रॉमिस मैं पूरा रखने वाली हूँ येस आई डिड गेट माई चाय इन दिस टू सॉन्ग्स एंड आज का ये जो सेकेंड आवर का हमारा जो फीचर होता है एंड दैट इज़ जोड़ी नंबर वन सो शम्मी कपूर एंड आशा पारेख की जोड़ी मैंने सिलेक्ट की है और उन्हीं की फिल्मों में से अगले दो गीत मैं आप सबको सुनाने वाली हूँ आप लोगों के बैक टू बैक मैसेजेस आ रहे हैं घर में नाश्ता खाना क्या बन रहा है वो बता रहे हो कौन कहाँ शॉपिंग गया था कितनी चपत लगी हाँ ये भी और खाने में जब आप लोगों के मेन्यूज़ मुझे आप दिखाते हो तो मैं मेरी तरफ से भी सजेशन डाल देती हूँ कि अच्छा इसके साथ में ये बना के देखो ना यस द गृहिणी द मम्मी द हाउस वुमन इन मी डेफिनेटली शी जम्प्स अप एंड इसके साथ में ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है इट एक्चुअली डज ये सजेशंस ना काम में भी आते हैं राइट सो काफ़ी फनी वियर्ड सी बातें भी हम करने वाले हैं इस आवर में और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उन पे हम हंसते हैं मुस्कुराते हैं गुस्सा होते हैं खफा होते हैं और साथ में कभी कभी न्यूट्रल होते हैं हाँ ठीक है यार हो गया तो हो गया रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स ओके
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 127 इंडियन रुपी 80 पैसे. Don't forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
2: Yeah. Like our radio.
3: This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410
5: South Hall Travel, at all protected.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: चलिए मिला लेते हैं एक बार घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। 11:26, इट्स 26 मिनट्स पास्ट 11। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन, मैनचेस्टर एंड मिडलैंड्स। मेरा नाम है अश्विनी, आई एम सिटिंग इन फॉर रितु टुडे। तीसरी मंजिल, इस फिल्म से सुनाया आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सभी को ये गीत। म्यूजिकल मिस्ट्री थ्रिलर है ये फिल्म, डायरेक्टेड बाय विजय आनंद, फीचरिंग मेमोरेबल म्यूजिक बाय आर डी बर्मन। नेक्स्ट गीत आपको सुनाने वाली हूँ इन्हीं की जोड़ी की फिल्म से विच इज़ कॉल्ड पगला कहीं का। सो पगला कहीं का गीत सुनाए, लेकिन उसके पहले कुछ पागलपन हमारे साथ भी होता है रोज़मर्रा की लाइफ में, छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन कभी हम एज आई सेड अलग अलग इमोशंस में आ जाते हैं। जैसे सुपरमार्केट जब हम जाते हैं, सुपरमार्केट में हमने अपनी चीज़ें ले ली, अपने बास्केट में डाल ली, और हमारे पहले अगर हम जा रहे हैं बिलिंग काउंटर पे, हमारे पहले किसी के पास में बड़ी ट्रॉली में पूरा सामान ऐसे भरा है कि 100 चीज़ें, तो उनके पहले भाग के हम जाना चाहते हैं क्योंकि हमें अपना बिलिंग करवाना होता है। बस स्टॉप पे भी है ना, कोई बस मिस नहीं होती है, ऐसा हम सोचते हैं कि मिस नहीं होगी, लेकिन कितनी बार बस के पीछे भागते दौड़ते हुए, मैं खुद को कितनी बार सिमरन समझ के दौड़ पड़ी थी बस पकड़ने के लिए कि कोई तो राज गाड़ी रोक के मुझे हाथ दिखा कि आओ आओ इस बस में सवार हो जाए, लेकिन ना हुआ ही नहीं ऐसे। द बिग बैग, बिन बैग जगल, ऑब्वियसली बिन बैग्स जो हम डालने जाते हैं, जो अलोकेटेड डेज है हम सबको अपनी अपनी सिटीज में, तो स्लीपर्स अटका के, अपने गाउन अटका के जब हम बाहर आते हैं और जब ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो ऊ करते हुए हम बिन बैग्स डालते हैं, और तब अगर बहुत तूफानी हवा है और वो बिन बैग्स उड़े तो हमारा पारा नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। यस, अनएक्सपेक्टेड आइटम इन बैगिंग एरिया, ये जब हम सुनते हैं तो हम इधर उधर देखते हैं कि कुछ तो नहीं है, मैं कोई चोर थोड़ी हूँ यार, ये क्यों आ रहा है ऐसे अनएक्सपेक्टेड, मैंने तो कुछ लिया ही नहीं एक्स्ट्रा। उस समय लोगों के एक्सप्रेशंस देखने लायक होते हैं। ये सुपरमार्केट में ना ऑब्जर्वेशंस किया कीजिए आप, बड़ा मजा आता है वहाँ पे। पासवर्ड पैनिक, ओह माय गॉड, ये तो होता ही रहता है कि बैंक की कुछ काम करने बैठे हैं, 3 बार आपने रॉन्ग पासवर्ड डाल दिया, लास्ट अटेम्प्ट बिफोर लॉकआउट आ जाए तो हो गया, मतलब ब्लड प्रेशर ऐसा जंप करता है ना। एंड घर में जो अलार्म बजता है, हम सभी एशियंस हैं, अगरबत्तियाँ, धूप जो है ये बहुत लगती है, मेरे घर में भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो उसके बाद जो पाया अलार्म, मतलब इतना सा भी धुआं होता, टों टों टों करके जो बजना शुरू होता है, तो उसमें सारी खिड़की दरवाजे खोलो, वो फाया अलार्म के पास में नैपकिन्स ले लेके उसके सामने वो हवा करो, आई माय गॉड, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आई एम श्योर आप लोगों के यहाँ पे भी ये सब होता होगा। इससे अलग कुछ है तो मुझे ज़रूर लिख के बताइए। नेक्स्ट ट्रैक, ब्यूटिफुल ट्रैक, थोड़ा सा ठहराव वाला, लता मंगेशकर की आवाज में, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे।
0: This is Laika Radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: हर रोज ही किसी ना किसी के लिए बहुत स्पेशल होता है. किसी का बर्थडे, एनिवर्सरी, किसी की नौकरी लगी, किसी की नौकरी छूटी, किसी का दिल जुड़ा, किसी का दिल टूटा, लेकिन हर रोज हम सब के लिए होता है बहुत बहुत स्पेशल. तो आज हिमांशु पटेल जी ने आते से ही मुझे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मेरी बेटी का बर्थडे है, क्या आप उन्हें विश कर सकते हैं. तो सीनल, हैप्पी बर्थडे टू यू. एंड आपके पापा जो हैं चाह रहे थे बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द शो से कि मैं आपको विश करूँ लाइक अ गोल्ड पे. आई थिंक किसी भी फादर का गुरूर होता है उसकी बेटी. यस, एंड व्हेन फादर्स बिलीव इन देयर डॉटर्स ना, तो यकीन करिए वो डॉटर्स मैजिकल बन जाती हैं अपने आप में. बड़ी स्ट्रॉन्ग, बड़ी उम्दा पर्सनालिटीज़ होती हैं. एंड लेट मी टेल यू कि किसी भी फीमेल के लिए पहला मेल इंटरेक्शन होता है उसके फादर के साथ में. सो व्हेन योर फादर बिलीव्स इन यू, व्हेन योर फादर सपोर्ट्स यू, आप बिलीव करना स्टार्ट करते हैं उस प्रजाति पे, है ना. एंड किसी भी मेल के लिए पहला फीमेल इंटरेक्शन होता है उनकी मम्मी के साथ. तो हम जब एज पेरेंट्स अपने रोल में उतरते हैं तो ध्यान रखिएगा कि जिस भी तरीके से आप अपने बच्चों के साथ बिहेव कर रहे हैं उस जेंडर के प्रति आप उन्हें एक ओपिनियन बनाने में मदद कर रहे हैं या फिर चैलेंज कर रहे हैं. बिल्कुल, बहुत सुंदर रिश्ते होते हैं हम सब के लाइफ में. एंड बिकॉज माई फादर बिलीव्ड इन मी ऑलवेज, एंड दैट वॉज द फर्स्ट इंटरेक्शन फॉर मी, द मेल इंटरेक्शन विथ माई फादर. एंड बिकॉज ही बिलीव, सो मुझे लगा कि हमेशा यू नो देर आर ब्यूटिफुल मैन आउटसाइड इन द वर्ल्ड. एंड येस, आई हैव मेट द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन, अमेजिंग मैन अराउंड द वर्ल्ड. और होता है, हम सब भी जो होते हैं ना वो बनते हैं बिकॉज अपने अपनी छोटी छोटी चीज़ों पर जब हम काम नहीं करते कॉन्शियसली. जी हाँ, नो ज्ञान वाला नो ज्ञान नो लेक्चर अभी, बट इतना ही कहना चाहूँगी कि पापा लोग प्लीज़ अपने बेटों के साथ अपनी बेटियों में बिलीव करें और उन्हें सपोर्ट करें. सो जिनका जिनका बर्थडे एनिवर्सरी है, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को.
2: दिस इज रितु शर्मा. बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड. मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड. रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम नाइट गोल्ड पर सुनिए.
1: पॉडकास्ट में एपिसोड 34 आ चुका है. मॉडर्न हैरेसमेंट दीप राजा ने इसे होस्ट किया है. दीप राजा स्पीक्स टू संगीता पांडे ऑफ IIW एंड गायत्री शिनॉय, प्रिंसिपल बिजनेस एनालिस्ट, अबाउट मॉडर्न हैरेसमेंट. दे एक्सप्लोर मॉडर्न हैरेसमेंट एट वर्क, फैमिली एंड व्हेन वन शुड स्पीक अप. लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट पे हम बहुत सारी वैरायटी आप सबके लिए लेके आ रहे हैं, जहाँ पे आप लोगों के लिए आई ओपनर्स हैं, अवेयरनेस हैं. तो ज़रूर देखिएगा लाइका पॉडकास्ट जो है, अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेज़न, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स.
2: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर. गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव. ये है लाइका रेडियो.
3: Ready UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi and more surprises on the night. Expect music, madness, family entertainment and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026 happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
4: 31st October, Mattioli Arena Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
3: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
4: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
5: Function rakha hua hai.
6: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The new properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months, featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports. There's an opportunity waiting for you, so why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203 963 5757 to arrange your meeting.
7: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
8: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
7: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
8: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
7: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
8: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best gara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour, from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
9: Khakra Crunch Bhakri Munch, Chicky Sweet, Papad Beet, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
10: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, Namkeen, Papad, Pickles, Chicky, Pot Meals and much more.
9: Jaimin Foods Desi Cravings, available at nearest ethnic grocery stores.
11: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
12: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
3: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में.
12: From Dudley to Aston, Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands. On this week's Leica Extra podcast, Dee Praja talks about modern harassment.
13: A lot of the time, women, they can be unnecessarily harassed, hassled, not in a very nice way.
14: Subtle
13: way. You know it's happening. They know it's happening. When are we going to actually speak up and say,
14: now,
13: hang on, uncle, that wasn't right, mummy, do something.
14: Now is the time to do it,
13: right,
14: actually.
13: How?
12: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. This is Leica.

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 128.49 इंडियन रुपी, 86.35 अफगान अफगानी, 371.37 पाकिस्तानी रुपी, 164.79 बांग्लादेशी टाका, 442.93 श्रीलंकन रुपी, 173.48 कैनियन शिलिंग, 1.33 यूएस डॉलर, 63.74 मॉरिशन रुपी.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
1: Gold is currently trading at £105.11.
0: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
1: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स नियरली 50 मिनट्स पास्ट 11. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन, मैनचेस्टर एंड मिडलैंड्स. अभी जो गाना प्ले किया था ना, तो मेरा पड़ोसी जो है ना अनुज, वो आके मुझे कहता है यार क्या गाने प्ले कर रही हो. मतलब सोचिए आप, हमारे लिसनर्स आप तो सुनते ही हैं, लेकिन हम जो अड़ोसी पड़ोसी हैं, हम भी एक दूसरे की चैनल पे ये कौन सा गीत प्ले कर रहा है, ये कौन सी गीत प्ले कर रही है, हम देखते हैं. Yes, yes, I genuinely enjoy meeting all my fellow presenters. और हम लोगों का बहुत यहाँ पे मस्ती मजा इंटरेक्शन चलता है, जैसे चलता है इंटरेक्शन आप सबके साथ में. इस आवर का आखिरी गीत आप सबके लिए मैं पेश कर रही हूँ, दैट इज पेश कर रही, तो ऐसे बोल रही हूँ जैसे मैं गाने वाली हूँ, है ना. आई सो विश मेरी आई, मेरी मम्मी की आवाज़ इतनी प्यारी थी, शी वॉज सच अ मेलोडियस सिंगर. आई विश आई कुड सिंग. कभी कभी होता है कि अपनी पेरेंट्स से हम हल्के से जेलस होते हैं कि मम्मी यार ये तुम्हारी चीज़ मुझ में होती तो कितना अच्छा होता. कामचोर फिल्म से सुना रही हूँ आप सभी को तुझ संग प्रीत, एंड दैट इज किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ में. दिस विल बी द लास्ट ट्रैक ऑफ सेकेंड आवर. थर्ड आवर की तरफ हम बढ़ रहे हैं. थ्री वर्ड्स वाला जो गेम है, थ्री वर्ड्स से आपको बताना है कि कौन सा गीत मैं आप सबके लिए फिर से पेश करूँ या सुनाऊँ. दिस इज लाइक अ गोल्ड रेडियो, माय नेम इज अश्विनी, आई एम सिटिंग इन फॉर रितु टुडे.
0: Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma. LIKA Radio. This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera. Every day at 8 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: Leicester Falcon Cash and Carry festive shopping ka perfect destination. Kanish Idols ab available hain sabhi Falcon stores par. Onam Sandhya ke liye pre-bookings bhi shuru ho chuki hain. Falcon snacks 300 grams ki full range sirf £1.99 each. Mustafa Dehraduni rice 20 pounds sirf £13.49. Suhana Khaman Thokla 500 grams sirf £1.99 each ya 2 for £2.99. Tilda Grand Basmati 20 kg sirf £29.96. S Motiram Namkeen ab sirf 99 pieces shuru. Or Herdsman Butter Ghee 20 kg sir 10.99.
3: Falcon Cash and Carry 82A Syston Street West, Leicester LE12JU and 2A Rollout Sale, Leicester LE54UN.
0: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali on Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham, a memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
4: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
5: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danu Properties Dubai has something for everyone.
6: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
7: Dubai is the place. 11,
6: 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
8: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
9: See
8: City Bond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
9: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
8: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
9: Also explore 2026 cruises
8: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call City Bond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
10: Birmingham, get ready as Surrenderella is back for 2026. Rivco Theatre Company's smash hit Dirty Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Crescent Theatre Birmingham Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October. With dance floor bangers by the hitmaker PBN, Surrenderella is guaranteed Dirty Panto fun for all the family. And with tickets from only £15, click rivcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Radio partner Leica Radio.
11: Four stars, one stage, one date. Jay's Entertainment presents Bollywood Legends featuring actor Sanjay Kapoor, actor Aftab Shivdasani, playback singer Amantrika, and singer Mayuri Patalia. Sunday the 27th of September at De Montfort Hall, Leicester from 7pm. Tickets from £20. Book now at demontforthall.co.uk or call Mr. B on 07860 280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
0: From Dudley to Handworth Wood, Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands. Across the Leica Radio network, this is Ritu Sharma. This is Leica Radio across the Midlands.

0: on 0208 574 8410.
1: V-Head.
2: Leica Radio. Ritu Sharma.
1: ओह जी क्या बात, तीसरी आवर में आप और हम बढ़ रहे हैं आगे. वेलकम, दिस इज द थर्ड आवर. माय नेम इज अश्विनी, आई एम सिटिंग इन फॉर रितु टुडे. दो बैक टू बैक गीतों के लिए वॉल्यूम अप रखिए, उसके बाद में हमारी मस्ती गपशप शुरू है यहीं पे ऑन लाइका गोल्ड रेडियो.
2: लाइका रेडियो,
3: लाइका रेडियो,
2: लेट्स रिटर्न टू द बिगेस्ट हिट्स बैक टू बैक. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. The Ritu Sharma Show, featuring classics non-stop with Ritu Sharma on Leica Radio.

0: वेलकम जी, वेलकम। दिस इज द थर्ड एंड द आखिरी पड़ाव ऑफ द मिड मॉर्निंग शो जो करती हैं ऋतु जी। मेरा नाम है अश्विनी। आई हैव बीन कवरिंग ऋतु यस्टरडे एंड टुडे। सो यस, अगले सप्ताह ऋतु जी वापस आएंगी इस हॉट सीट पर, आपका मनोरंजन जरूर करेंगी। सो थर्ड आवर होता है थ्री वर्ड्स वाला जो गीत है, वो कौन सा गीत है, ये सवाल मैं आप सबसे पूछने जा रही हूँ। लेकिन उसके पहले बात करते हैं इन दो गीतों की। 90s का ये मेरा फेवरेट गीत आईना फिल्म से कुमार सानू है नाशा भोसले की आवाज़ में, मेरी सांसों में तुम, उसके बाद में एक दूजे के लिए लता मंगेशकर एंड SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में हम बने तुम बने। इसमें तुम हो बुद्धू बुद्धू मुझे इतना अच्छा लगता है ना, होता है ना कुछ कुछ गीतों के कुछ कुछ वर्ड्स हमारे साथ में रह जाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। सो मैं आप सबसे सवाल पूछने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले आज ऐसा शायद किसी का बर्थडे होगा, एनिवर्सरी होगा आज, और क्या मनाया जाता है, आज मनाया जाता है नेशनल पेपरोनी पिज्ज़ा डे, उसके बाद में नेशनल फ्राइड राइस डे, नेशनल इंक्लूजन वीक, सबसे इम्पॉर्टेंट वाइफ अप्रिसिएशन डे है। अब वाइफ अप्रिसिएशन डे में अगर आपके सिर में आइडिया ना आए कि अश्विनी जी अब यार आपने मतलब दोपहर के 12:20 हो रहे हैं और अब आप बता रहे हो वाइफ अप्रिसिएशन डे, तो अगर वो रेडियो नहीं सुन रही हैं और अगर आपको उनको स्पेशल फील करवाना है तो बिल्कुल मत बताना कि मैंने आपको बताया कि आज आप उनको कहीं बाहर लेके चले जाओ खाना खाने के लिए, घर पे कुछ लेके आओ खाना खाने के लिए, या फिल्म देखने लेके जाओ, है ना। वाइफ अप्रिसिएशन डे यार, कोई भी रिलेशनशिप में अप्रिशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड स्पेशली वाइफ अप्रिसिएशन डे बहुत बहुत ज़रूरी है ये एक सुखद मैरिज के लिए एक सुखी परिवार, एक सुखी वातावरण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विथ मी वाइफ अप्रिसिएशन डे बिल्कुल हो चुका है, कल शाम गणपति बापा के दर्शन करने मेरे फ्रेंड्स आए थे, तो माई हस्बैंड ऑलरेडी गॉट लॉट्स ऑफ फूड, तो आई हैव टू लाइक छुट्टी फॉर नो कुकिंग, सो माई अप्रिसिएशन इज ऑलरेडी डन। तो अगर आप भी अप्रिसिएट करना चाहते हैं अपनी वाइफ को, एंड ऑल दोज वाइफ जो भी किचन में खड़े होकर सोच रही थी कि मैं क्या खाना बनाऊँ, तो आहा वाइफ अप्रिसिएशन डे वसूल कीजिए जाके राइट। अब आई होप शो के एंजॉयमेंट के साथ साथ आप फूड भी एंजॉय कर रहे होंगे। एंड आते हैं असाइनमेंट पे, क्या लगा अश्विनी खुश हो जाएगी, हाँ शाबाशी देगी और सवाल नहीं पूछेगी, ना ना थर्ड एंड द आखिरी आवर है, तो सवाल ये कौन सी गीत की बात मैं कर रही हूँ, बात रह कर दूर, ये कौन सा गीत है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, उल्टा पुल्टा है ये थ्री वर्ड है, इसको लेके मुझे बताइए कि ये कौन सा गीत है जिसके शब्द आपको बताए जा रहे हैं, बात रह कर दूर, लिख के भेजिए। चलते हैं आगे।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co. UK. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai, every day at 7 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
2: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting. Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour. From the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
1: London, are you ready? Raghavendra presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
3: દુબઈમાં પ્રોપર્ટી ખરીદવાની તમારી સફર હવે લેસ્ટરથી શરૂ થાય છે.
4: હેલો એવરીવન, ધીસ ઇઝ રિઝવાન સાજન, ફાઉન્ડર એન્ડ ચેરમેન ઓફ ડેન્યુ પ્રોપર્ટીઝ, અને અમે લાવી રહ્યા છે દુબઈ પ્રોપર્ટી એક્સપો મારિયટ હોટેલ લેસ્ટરમાં 26-27 સપ્ટેમ્બરમાં.
3: પોચ રિયલ એસ્ટેટ તમને આમંત્રિત કરે છે ડેન્યુ પ્રોપર્ટીઝ સાથે દુબઈ પ્રોપર્ટી એક્સપોમાં. મેરિયટ હોટેલ સ્મિથવે લેસ્ટર, LE19 1SW, 26 અને 27 સપ્ટેમ્બર, સવારે 10 થી રાત્રે 8 વાગ્યા સુધી. જાણો ગ્રીન્સ, બ્રીઝ અને શાહરૂખ વિશે. પ્રોપર્ટીઝ 1,90,000 pounds થી, બુકિંગ માત્ર 5,000 pounds થી. દુબઈની મફત ફ્લાય આઉટ ઓફર્સ વિશે પૂછો. દુબઈની તમારી સફર અહીંથી શરૂ થાય છે. શરતો લાગુ.

0: चलिए मिलाने एक बार घड़ियां देखते हैं, टाइम कितना है, 12:26, इट्स 26 मिनट्स पास्ट 12। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन, मैनचेस्टर एंड मिडलैंड्स। मेरा नाम है अश्विनी, आई एम सिटिंग इन फॉर रितु टुडे। रितु जी आने वाली हैं अगले सप्ताह, तो ज़रूर साथ दीजिएगा। एंड हमारे बाद जो प्रेजेंटर आते हैं वो ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो उनका भी साथ देने के लिए रही है तैयार। तो थ्री वर्ड्स जो मैंने पूछे कि आखिरी आवर का ये जो फीचर है थ्री वर्ड्स वाला, ये कौन से गीत की बात कर रही हूँ? बात रहकर दूर, ये कौन से गीत की बात मैं कर रही हूँ? ज़रूर लिख के भेजिए। और एक अजीब से इंसिडेंट में देखने मिला, तो किसी दूसरी कंट्री का ही ये सीन था। एक्चुअली एक लड़की जो है पेवमेंट पे से चलते हुए जा रही है, सामने से बाइक पे एक लड़का आता है, उनकी तरफ बंदूक दिखा के उनका फ़ोन मांगता है। तो वो लड़की आती है, उसके हाथ में फ़ोन देती है, कहती है मेरा फ़ोन तो तुम ले जाओ, बस फैक्ट्री रीसेट मुझे करने दो। बड़ी शांति से वो चोर वहीं पे खड़ा रहता है और फ़ोन उसी के हाथ में रखता है, खुद के हाथ में। एंड वो लड़की जो है पूरा फैक्ट्री रीसेट उस फ़ोन पे कर देती है और कहती है मेरा फ़ोन लेके जाओ। और ये ना किसी CCTV में एक्चुअली कवर हुआ है ये जो इंसिडेंट है। एंड दोनों भी इतनी शांति से, वो चोर भी एक बार वो फ़ोन हाथ में लेके फिर पीछे पलट के उस लड़की की तरफ देखता है, एंड वो शांति से जा रही है, नो दुख दर्द पीड़ा। आई मीन मे बी शी कंट्रोल, बिकॉज ऑब्वियसली उस बंदी के पास में बंदूक थी, पिस्टल थी। सो अपनी जान बचाना बहुत ज़रूरी था उसके लिए, शायद इसलिए हुआ रहेगा। लेकिन किसी भी परिस्थिति में अपने एंगर को कंट्रोल रखना, अपने इमोशन को कंट्रोल करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब देखिए ना, सोचिए ना, अगर एंगर लोग कंट्रोल करना सीख जाए तो आपको लगता है कि जो जेलें बनी हैं अलग अलग देशों में, वहां पे थोड़ी सी भी भीड़ होती? सोचिए और मुझे बताइएगा। नेक्स्ट ट्रैक जॉन ही मेरा नाम फिल्म से।
1: Like a radio. Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: Ye hai Leica Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 128.47 इंडियन रुपी, 86.36 अफगान अफगानी, 371.34 पाकिस्तानी रुपी, 164.67 बांग्लादेशी टाका, 442.89 श्रीलंकन रुपी, 173.46 कैनियन शिलिंग, 1.33 यूएस डॉलर्स, 63.73 मॉरिशियन रुपी.
1: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
1: Leica Radio.
0: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
2: Gold is currently trading at £105.11 per gram.
0: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278.
2: चलिए मिला लेंगे घड़ियां एक बार आखिरी बार और देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 50 मिनट्स पास्ट 12. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन मिडलैंड्स एंड मैनचेस्टर. माय नेम इज अश्विनी. आई हैव बीन कवरिंग ऋतु यस्टरडे एंड टुडे एंड व्हाट अ प्लेजर टू बी ऑन दिस हॉट सीट एंड इन फ्रंट ऑफ दिस माइक एंड द फोर स्क्रीन्स एंड बड़े बड़े स्पीकर्स. आई जेन्युइनली फील ब्लेस्ड जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ और आप सबसे बातें होती हैं. बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छी फीलिंग है. आई मीन ग्रैटिट्यूड कि आप सबसे मैं कनेक्टेड हूँ थ्रू मैसेजेस, थ्रू सोशल मीडिया. माय सोशल मीडिया एज रेडियो वाली अश्विनी, दैट इज़ माय इंस्टाग्राम. एंड हमारी छोटी छोटी क्लिप्स और छोटी छोटी बातें आप हमारे इंस्टाग्राम लाइका गोल्ड रेडियो पे देखते रहते हैं. हमेशा की तरह इतना ही कहूँगी कि भाई जिंदगी बहुत खूबसूरत है, प्लीज़ उसे कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं. अपने मन जहन दिमाग में जो भी चीज़ें हैं बोल के बताएं. पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए चाहिए, राइट? सो लव इज़ अ ब्यूटिफुल फीलिंग. तो हमेशा प्यार दो, प्यार लो एंड अपने आप का खूब ख्याल रखो. अपने आप से कहो कि आई हैव डिसाइडेड टू बी हैप्पी. बहुत सारे लोगों ने आज मुझे कहा, जिन्होंने शायद मुझे पहली बार सुना हो, कहा कि अश्विनी तुम बड़ी खुश लग रही हो. मैं खुश इसलिए लग रही हूँ क्योंकि मैंने डिसाइड किया है, आई हैव डिसाइडेड टू बी हैप्पी. वैसे आप भी डिसाइड करें. लास्ट ट्रैक के साथ हियर आई से लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय. अनुराग इज नेक्स्ट.
1: Leica Radio.
3: Hey there, main hu Bali Brambhat. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, ansuni baatein, raag adharit gaane on Leica Gold and Leica Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.
1: Ye hai Leica Radio.
4: Leica Radio.
5: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
6: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन. कनीश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर. ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं. फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच. मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 पाउंड्स सिर्फ 13.49. सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99. टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96. एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99p से शुरू और हर्जमैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99.
7: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE1 2JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE5 4UN.
8: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
9: Southall Travel. Call 0208-574-8410. 0208-574-8410.
10: Southall Travel can take you there.
11: Southall Travel. At all protected.
10: weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
11: हमारी रक्षा है वो
12: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट
13: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सब का मतलब क्या है कौन कर रहा है
12: मिस्ट्री फैंटेसी एक्शन द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमास फ्राइडे 25th सितंबर फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम
14: Hi, I'm Kajal from Laika Radio. Fancy owning a property in Dubai? Well, your Dubai property journey could start right here in Leicester. Join me live at the Dubai Property Expo with Pods Real Estate and Danube Properties at the Marriott Hotel in Leicester on September 26th and 27th from 10 a.m. till 8 p.m. I'll be there live on Saturday the 26th from 1 p.m. till 4 p.m. So come down, say hello and discover Greens, Breeze and Shahrukhs with properties from £190,000 and bookings from just £5,000. Plus, ask about free flyout offers to Dubai. Terms and conditions apply. Come and join me. Your Dubai property journey starts here.
1: From Alum Rock to Winston Green, Laika Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Laika Radio Midlands. From Helzowen to Harborne, Laika Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Laika Radio Midlands. Anandi Shah with Weekend Bliss on Laika Radio. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma. Classic Throwback is brought to you by Leica Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Leica Gold 2. Available at leicaradio.com, via Alexa, or by using our Leica Radio mobile app.

मुंबई। सुना था यहाँ आदमी पूरी जिंदगी अपनी किस्मत स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक लाने में निकाल देता है, पर ढाई घंटे में मेरी किस्मत ऐसी स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक पर आ जाएगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। सजा मजा बन जाएगी।

0: कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सही कहते हैं।
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
2: Gold is currently trading at £105.11 per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278. Leica Radio. Weekend Bliss with Anandi Shah.
3: This part of the show is brought to you by Anupama, every day at 7:30 p.m. on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar. Four stars, one stage, one date. Jay's Entertainment presents Bollywood Legends, featuring actor Sanjay Kapoor, actor Aftab Shivdasani, playback singer Amantrika, and singer Mayuri Patalia. Sunday the 27th of September at De Montfort Hall, Leicester from 7 p.m. Tickets from £20. Book now at demontforthall.co.uk or call Mr. B on 07860 280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
4: We're finally going home for the wedding.
5: I know, I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
4: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos and keeping everyone updated.
5: That's why I'm using Simzy. Data in 220+ destination with 4G and 5G where available.
4: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
5: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
4: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
1: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
7: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
6: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
7: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574 8410। दैट्स 0208574 8410।
8: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
9: Birmingham, get ready as Surrenderella is back for 2026. Rivco Theatre Company's smash hit Dirsi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Crescent Theatre Birmingham Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October. With dance floor bangers by the hitmaker PBN, Surrenderella is guaranteed Dirsi Panto fun for all the family. And with tickets from only £15, click rivcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Radio partner, Leica Radio.
10: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन उनका फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
11: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
12: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 0203773633 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
13: हमारी रक्षक है वो।
14: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट।
15: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है ये?
14: मिस्ट्री, फैंटेसी, एक्शन, द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमास फ्राइडे 25th सितंबर। फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम।
16: दुबई इज एन अपॉर्चुनिटी, सो नाउ बी अ पार्ट ऑफ इट। क्रिएट वेल्थ विद अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट एवरी मंथ। द न्यू प्रॉपर्टीज दुबई हैज समथिंग फॉर एवरीवन विद इट्स एंबिशियस 11
17: 7-Eleven initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports. There's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203 963-5757 to arrange your meeting.
1: Next, Sarita Sabharwal with Golden Memories on Leica Radio Midlands. 90s throwback plays now. Leica.

0: प्रोग्राम का आगाज हो चुका है, दो खूबसूरत गीत मैंने आपके लिए पेश किए और उम्मीद करती हूँ इन गीतों को आपने पसंद किया। पहला गीत था फिल्म गुमराह से, 1993 की फिल्म, और दूसरा गीत था फ्रॉम द फिल्म आशिक हूँ बहारों का, फिल्म से, एंड दैट वाज इन 1977। किशोरदा की आवाज़ शामिल थी और पहले गीत में रूप कुमार राठौर की आवाज़ में आपने खूबसूरत सा गीत सुना। और पहला गीत इसलिए प्रोग्राम में शामिल हुआ, ये फिल्म बनाई थी किसने, महेश भट्ट साहब ने। महेश भट्ट साहब आज अपना बर्थडे मना रहे हैं, हमारी तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई। बॉर्न ऑन 20th of September इन 1948 एंड नाउ ही इज रिटायर्ड इंडियन डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड स्क्रीन राइटर, नोन फॉर हिज वर्क इन हिंदी सिनेमा। और बहुत सी फिल्में इन्होंने बनाई और इन्हें कितनी दफ़ा नेशनल अवार्ड मिला। इन 80s एंड 90s इनकी सिनेमा, इनकी जो फिल्में थी बहुत पॉपुलर हुई थी। ही हैज़ रिसीव्ड अ नंबर ऑफ अक्लेड्स एंड इंक्लूडिंग 5 नेशनल फिल्म अवार्ड्स एंड 4 फिल्म अवार्ड्स एंड अ नोटेबल फिल्म फ्रॉम हिज अर्ली पीरियड इज सारांश। आप सबको याद होगा जब इन्होंने अनुपम खेर को लिया था इस फिल्म में, बहुत खूबसूरत फिल्म थी एंड अनुपम खेर साहब का काम भी बहुत खूबसूरत था। दैट वॉज इन 1984 एंड उसके बाद हाँ ये भी बता दूँ कि ये फिल्म जो थी दैट वॉज स्क्रीन ऑन द 14th मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एंड इट बिकेम इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द एकेडमिक अवार्ड फॉर द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म दैट ईयर। एंड 1986 में इन्होंने फिल्म बनाई थी नाम, जिसके गाने भी बड़े मशहूर हुए थे और फिल्म भी बड़ी अच्छी थी, और ख़ास तौर पर उस फिल्म का ये गीत चिट्ठी आई है बहुत फेमस हुआ था। और बहुत कुछ बातें और भी होंगी महेश भट्ट साहब के बारे में, और ट्राई करूंगी कुछ और गीत नेक्स्ट आवर में भी और उससे अगले आवर में भी आप तक पहुंचा पाऊं। चलिए अब आपने जान ही लिया होगा कि आज के प्रोग्राम के इस आवर में कौन से क्या मौजू है, कौन से वर्ड पर गीत आने वाले हैं। तो अगर आपकी कोई ख़ास पसंद हो तो आप मुझे लिखकर बता सकते हैं। वैसे मैंने प्लेलिस्ट अपनी तैयार रखी है, बड़े अच्छे अच्छे गीत मैंने शामिल करने के लिए क्यों कर दिए हैं। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, मौसम है आशिकाना, देन मैं आशिक हूँ बहारों का, एंड ऐसे मैं बहुत सारे गीत मैंने शामिल यू नो प्लेलिस्ट में कर दिए हैं। पर आपकी कोई ख़ास पसंद हो तो आप मुझे ज़रूर लिखकर भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब मैं बता दूं कि लाइका रेडियो नेटवर्क के ज़रिए लाइका गोल्ड पर 10:35 पर ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, DAB पर, अलेक्सा, गूगल होम एंड laikagold.com पर सुना जाता है। आप मैनचेस्टर में हैं, बर्मिंगम में हैं, लेस्टर में हैं, मिडलैंड्स में, कहीं भी हैं, जहां भी बैठे ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप सबका स्वागत, आपका खैर मकदम करती हूँ। और अब तो लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर हैज़ लॉन्च्ड अक्रॉस ब्रैडफोर्ड एंड लीड्स में भी, तो ये जानकारी अपने जानने वालों तक ज़रूर पहुंचाइएगा ताकि वो भी लाइका रेडियो नेटवर्क के प्रोग्रामों का लुत्फ उठा सकें। अब आपकी बारी है, ज़रा पूछ लूँ कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी के हर पल को इंजॉय कर रहे हैं, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें, ये दुआ ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी। किसी वजह से अगर आप ठीक फील नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन तो कम ऑन चीयर अप, लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू इन्जॉय, जियो शान से मुस्कुराते गुनगुनाते, चहकते महकते और तिरकते हुए। गाने तो चुन चुन कर लाई है सरिता आपके लिए, आपकी पसंद की कसौटी पर खरे उतर जाएं तो मुझे जरूर इस बात का एहसास दिलाइएगा।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, भी SBI UK के जरिए अगर आप पैसे इंडिया में कहीं भी ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो आज आपका 1 British sterling pound can get you up to 127 rupees and 80 paisas. It depends कि कितना अमाउंट आप ट्रांसफर करा रहे हैं. Don't forget to exchange in branch, online और SBI YONO मोबाइल ऐप के जरिए। टर्म्स एंड कंडीशंस आर ऑलवेज देयर।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Sarita Summerwall with the biggest classics on Leica Radio. This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: દુબઈમાં પ્રોપર્ટી ખરીદવાની તમારી સફર હવે લેસ્ટરથી શરૂ થાય છે.
3: હેલો એવરીવન, ધીસ ઇઝ રિઝવાન સાજન, ફાઉન્ડર એન્ડ ચેરમેન ઓફ ડેન્યુ પ્રોપર્ટીઝ, અને અમે લાવી રહ્યા છે દુબઈ પ્રોપર્ટી એક્સપો મારિયટ હોટેલ લેસ્ટરમાં 26-27 સપ્ટેમ્બરમાં.
2: પોર્ટ્સ રિયલ એસ્ટેટ તમને આમંત્રિત કરે છે ડેન્યુ પ્રોપર્ટીઝ સાથે દુબઈ પ્રોપર્ટી એક્સપોમાં. મેરિયટ હોટેલ સ્મિથવે લેસ્ટર, LE19 1SW, 26 અને 27 સપ્ટેમ્બર સવારે 10 થી રાત્રે 8 વાગ્યા સુધી. જાણો ગ્રીન્સ, બ્રીઝ અને શાહરૂખ વિશે. પ્રોપર્ટીઝ 1,90,000 pounds થી બુકિંગ માત્ર 5,000 pounds થી. દુબઈની મફત ફ્લાયઆઉટ ઓફર્સ વિશે પૂછો. દુબઈની તમારી સફર અહીંથી શરૂ થાય છે. શરતો લાગુ.
1: 4 stars, 1 stage, 1 date. Jay's Entertainment presents Bollywood Legends featuring actor Sanjay Kapoor, actor Aftab Shivdasani, playback singer Aman Trika, and singer Mayuri Patalia. Sunday the 27th of September at De Montfort Hall, Leicester from 7 PM. Tickets from £20. Book now at demontforthall.co.uk or call Mr. B on 07860 280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.

0: 1967 की फिल्म थी, नाम था जिसका फर्ज, और इस फिल्म का गीत आप तक हमने पहुंचाया लता जी एंड मुकेश जी की आवाज़ों में। फिल्म का संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने, और फिल्म में काम किसने किया था, डू यू रिमेम्बर? जितेंद्र एंड बबीता ने। गीत पसंद आया आपको? अगर हाँ तो अपने होने का एहसास दिला दें और जल्दी से मुझे बता भी दीजिए, और मैं आपको बता दूं कि ये गीत आप तक पहुंचाया।
1: Feel Good Track brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: राइट, अब मैं ज़रा आपको याद दिला दूं, वैसे हमारे यहाँ से आप रोज़ सुनते हैं कि ये दिवाली स्टोरी इज़ कमिंग, सो फाइनल फ्यू डेज़ रह गए हैं। दिवाली स्टोरी ब्रॉट टू यू बाय सनातन इवेंट्स एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइका रेडियो नेटवर्क। इट टेक्स प्लेस ऑन ओवो वेम्बले अरीना ऑन संडे 27th सितंबर को। डोर्स विल ओपन एट 4:30 PM विद अ स्टूडेंट प्री शो from 5 PM to 5:45 PM, and then the main performances from 6:15 till 9:30 PM. आप ज़रूर जाइएगा और आई एम श्योर यू आर गोइंग टू इन्जॉय इट। एंड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए और टिकट्स के लिए यू कैन विजिट www.diwalistory.com। यहाँ जाइए और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं। ये थी एक सूचना, और अब अगले गीत की तरफ।
3: ये है
1: Like a Radio Tasty Track of the Hour brought to you by Coca Noodles.
0: Another song in Mukesh Ji's voice. Film ka naam Aashiq, 1962 ki film.

0: Track of the Hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: एक और बड़ा ही जबरदस्त गीत सुना आपने मुकेश जी की आवाज में. एक्चुअली आशिक और आशिकी पर 90s में बहुत से गीत बने हैं, लेकिन पुराने गीतों में अगर चुनने जाएं तो बहुत ज्यादा गीत नहीं है. ये गाना मैंने चुना था फिल्म आशिक से, 1962 की फिल्म थी, एंड इस फिल्म में काम किया था राज कपूर साहब ने, और कौन थी, नंदा थी, पद्मनी थी, and if I'm not mistaken, and film ka sangeet taiyar kiya tha Shankar Jaikishan ji ne. Film ke sare gaane bade zabardast the aur unhi mein se maine is geet ko chuna. Ummeed karti hu aapne pasand kiya.
2: Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
3: ये है लाइका रेडियो.

0: का नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
1: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर
2: सरिता सबरवाल विद योर वीकेंड क्लासिक्स

0: जगजीत जी की सोलफुल वॉइस में आपने ये गीत सुना, नज़्म सुनी, और मुझे उम्मीद है कि आपने भी उतना ही इन्जॉय किया जितना आपकी प्रेजेंटर सरिता ने। ये प्रोग्राम का सेकेंड आवर है, इट्स 14 मिनट्स आफ्टर 5 o'clock, और उम्मीद करती हूँ कि सारे के सारे गाने इस आवर के स्पेशली आप ज़रूर इंजॉय करेंगे और अपने होने का एहसास ज़रूर दिलाएंगे। मुझे बता देंगे कि कहाँ बैठे आपके कानों में ये रस खुल रहा है। अब ये दो गाने जो मैंने आप तक पहुँचाए, ये महेश भट्ट जी की ही फिल्मों के गीत थे, और आप सभी जानते हैं अर्थ भी बहुत खूबसूरत फिल्म थी एंड क्रिमिनल ऑल्सो इन 1995। आज महेश भट्ट साहब अपना बर्थडे मना रहे हैं, उन्हें हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। एट द एज ऑफ 26 महेश भट्ट मेड हिज डेब्यू एज ए डायरेक्टर विद द फिल्म कॉल मंजिलें और भी हैं। देन उसमें स्टार किया था कबीर बेदी ने, साथ में थी प्रेमा नारायण इन 1974। एंड देन हिज 1979 फिल्म लहू के दो रंग स्टारिंग शबाना आजमी एंड विनोद खन्ना इन लीड रोल वन 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स इन 1980। And Helen received her first Filmfare as Best Supporting Actress, and Madhurkar Shinde won award for Best Art Direction. So, इनके साथ साथ बहुत सी सारी फिल्में इनकी एवरेज रही बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन इन्हें बहुत बहुत अक्लेम मिला। He was noticed and received great critical acclaim with art film called Earth. आपने देखी होगी ज़रूर, बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। एंड उसके बाद जन्म इन 1985, सारांश इन 1984। सो ऐसी बहुत सी यादगार फिल्में महेश भट्ट साहब ने बनाई हैं। एंड हिज बिगेस्ट रिलीज विद म्यूजिकल रोमांस वाज, आप सभी जानते हैं, आशिकी इन 1990। और उसके बाद उसमें भी इन्होंने राहुल रॉय एंड अनु अग्रवाल को एंड दीपक तिजोरी को लॉन्च किया था। दिल है कि मानता में आमिर खान थे, और साथ में अपनी बेटी पूजा भट्ट को इन्होंने लॉन्च किया। देन केम साथी, साथी के भी गाने बड़े खूबसूरत थे। 91 की फिल्म थी जिसमें आदित्य पंचोली को इन्होंने लॉन्च किया, एंड देन अतुल अग्निहोत्री को इन द फिल्म कॉल सर। ऐसे बहुत से आर्टिस्ट को इन्होंने प्लेटफॉर्म दिया। आज हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं महेश भट्ट जी के नाम।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, your £1 in British sterling can get you up to 127 rupees and 80 paisas today. And you can go to the branch to transfer money, or online, or SBI Yono mobile app ke zariye aap paise transfer kar sakte hain India mein kahin bhi. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Sarita Summerwall with the biggest classics on Leica Radio. This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai, every day at 7 p.m. on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: Your Dubai property journey starts in Leicester.
3: Hello everyone, this is Rizwan Sajjan, the founder and chairman of Danube Properties, and I'm so happy to invite you all to the Dubai Property Expo happening on 26th and 27th of September at Marriott Hotel Leicester.
2: Ports Real Estate invites you to the Dubai Property Expo with Danube Properties at Marriott Hotel, Smithway, Leicester, LE19 1SW, September 26th and 27th, 10 till 8. Discover greens, breeze and sharooks. Properties from £190,000. Bookings from just £5,000. Ask about free fly-out offers to Dubai. Your Dubai journey starts here. Terms and conditions apply.
4: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
5: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
6: For 15 years, Jannan has been part of your story across generations, across cultures, across every style. For everyday moments, special occasions, celebrations and new beginnings. Because style has no age, no background and no boundaries. 15 years of Jannan. For you, for us, for everyone. The Jannan and J-Dot anniversary sale, up to 70% off, starts on September the 25th online and on the 26th of September in stores nationwide.

0: 1970s. Yes, और इतने प्यारी प्यारी फिल्मों में काम किया था राजेश खन्ना ने. इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी आशा पारेख और ये फिल्म शक्ति सामंत साहब ने डायरेक्ट की थी और गुलशन नंदा के नॉवल पर ये बेस्ड थी कटी पतंग. और बहुत खूबसूरत गीत थे इस फिल्म के जिन्हें संगीत पर किसने किया था आपको बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है पर फिर भी बता देती हूँ. राहुल देव बर्मन जी ने संगीत पद के गीत बड़े पॉपुलर हुए थे और कटी पतंग बहुत खूबसूरत फिल्म थी एंड इस फिल्म को अवार्ड्स भी मिले थे, नॉमिनेशंस भी मिली थी. बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड नॉमिनेटेड शक्ति सामंत, बेस्ट एक्टर राजेश खन्ना, बेस्ट लिरिसिस्ट आनंद बख्शी, ना कोई उमंग है उस गीत के लिए, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर किशोर दा ये जो मोहब्बत है उस गीत के लिए एंड बेस्ट स्टोरी गुलशन नंदा जी को. एंड बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था आशा पारेख को और आशा पारेख जी की एक्टिंग भी इस फिल्म में लाजवाब थी, बहुत खूबसूरत. अब ये गीत एंड ऑल्सो रेस्ट ऑफ द सॉन्ग्स इन दिस आवर ये किसी के लिए ख़ास हैं जिन्होंने कल अपना 70th बर्थडे मनाया और ये हैं उर्मिला एंजेश जी जिन्होंने 70th बर्थडे मनाया और उनकी बेटी पूजा का बर्थडे 40th बर्थडे एंड देयर बिजनेस देयर उनकी जो कंपनी है डेलमर गेट लिमिटेड उसका भी 40 years उन्होंने बहुत प्यार से बहुत अच्छी तरह से अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इंजॉय किया उन्होंने और म्यूजिकल नाइट थी एंड मुझे भी इस पार्टी का हिस्सा बनाया जिसके लिए मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ. बहुत इंजॉय किया एंड इनके बच्चों की तरफ से मम्मी पापा को अपनी सिस्टर को बहुत सारा प्यार और हैप्पी बर्थडे कहते हैं. सागर इज़ देयर सन और सागर की वाइफ जैकलीन की तरफ से पूजा एंड साहिल आपको भी बहुत बहुत मुबारक. एंड एक बात उस पार्टी की ये भी थी कि संगीत बहुत खूबसूरत था, ख़ास तौर पर संगीता मेलेकर एंड सुरेश मिश्रा सर्वेश मिश्रा ये इंडिया से आए थे यहाँ ख़ास तौर पर इनके बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए और उन्होंने ये सारे गीत गाए जो मेरी प्लेलिस्ट पर इस वक्त हैं. जानना चाहेंगे कौन कौन से गीत हैं तो सुनते रहिएगा, कहीं जाने का नहीं है. फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि ये वाला गाना आप तक पहुंचाया किसने.
1: Feel good track brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: Sadabahar Geet. जिसे भी अपनी अपनी महबूबा के नाम करना है जल्दी से कर दीजिए, जरा उनकी तरफ मुस्कुरा कर देख लें वो खुश हो जाएंगे. गाना तो मैं सुनवा दूंगी मुकेश जी की आवाज में, लेकिन जरा अपनी महबूबा की तरफ देख लीजिएगा, उन्हें खुशी होगी. होता है ना ऐसे. सभी प्यार करने वालों के नाम प्यारा सा गीत.

0: रेखा एंड मानिक कह रही है, रेखा जी लिखते ब्यूटीफुल सॉन्ग, माय हस्बैंड किरित हैज डेडिकेटेड दिस सॉन्ग टू मी, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। अरुणा जी कहती है क्या बात है, संतोष जी कहती है मेरे नाम कर दिया ये गीत, थैंक यू। उल्लास आपको भी बहुत पसंद आए एंड शी सेंड मी सो मेनी हग्स, थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू सो मच। और ये बता दूं कि ये गाना आप तक पहुंचाया किसने?
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store. Sarita Summerwall with the biggest classics on Leica Radio.
0: बिल्कुल जी, आपके साथ ही हूँ मैं टिल 7 o'clock। 7 बजे आएंगे हमारे सैंडी शाह जो आप तक पहुँचाएंगे विंटेज गोल्ड प्रोग्राम। और इला जी एंड जयश जी, आपकी पसंद अभी नहीं आई है लेकिन कुछ देर इंतज़ार बनता है, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आप वाला गीत भी आ रहा है। राइट, आपको बताना चाहूँगी कि कैच द ब्रांड न्यू गेम शो इंडिया के टॉप 1% होस्टेड बाय अनिल कपूर एवरी वीकेंड एट 8 PM ऑन स्टार प्लस एंड जियो हॉटस्टार। डाउनलोड द सब्सक्राइब डाउनलोड एंड सब्सक्राइब टू द जियो हॉटस्टार ऐप नाउ एंड जियो हॉटस्टार इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्काई टीवी एज एन ऐप। So you can just download it on your phone or on your TV. और एक इन्फॉर्मेशन और है और वो ये है कि बहुत सारे शोज़ हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि उस्ताद राहत फ़तेह अली खां आ रहे हैं, TCO प्रेजेंट्स उस्ताद राहत फ़तेह अली खां, अ ट्रिब्यूट टू हिज अंकल उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खां ऑन हिज 30th डेथ एनिवर्सरी, वन डेट ओनली, संडे 18 अप्रैल 2027। टिकटें अभी से बुक कर लें। O2 लंदन में होने वाला है ये शो, रेडियो पार्टनर्स हैं लाइका रेडियो नेटवर्क। और संजय कपूर एंड आफ्ताब शिवदेसानी लाइव, यस जेज एंटरटेनमेंट ब्रिंग्स टू यू बॉलीवुड लेजेंड्स लाइव इन लंदन विद संजय कपूर, आफ्ताब शिवदेसानी, सिंगर अरमान त्रिखा एंड मयूरी पटालिया। एंड ये भी 27th को रहा है, यस अभी 27th संडे को, सितंबर की 27th को लेस्टर के डी मॉन्टफोर्ट हॉल में। एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर कौन है? लाइका रेडियो। और अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म, आपका गीत मैं प्ले करने जा रही हूँ ऑन योर वेरी ओन लाइका गोल्ड। कहाँ बैठे सुन रहे हैं बता दीजिए।
1: योर प्रोडक्ट एडवर्टाइज्ड अक्रॉस द लार्जेस्ट एशियन रेडियो नेटवर्क, वी आर लाइका रेडियो। ईमेल sales@leicamedia.co.uk। सरिता सबरवाल विद द बिगेस्ट क्लासिक्स ऑन लाइका रेडियो।

0: सूरज देवता अपने दर्शन देते रहेंगे एंड मैक्सिमम टेम्परेचर विल रिमेन 22. मैनचेस्टर में भी 20 डिग्री रहेगा पर बादल छाए रहेंगे और कल मिडलैंड्स में टेम्परेचर और डाउन हो रहा है 15 डिग्री सेल्सियस और कभी धूप कभी छांव रहेगी. अपने दिल के मौसम को अच्छा रखिए, बाहर का मौसम जैसा भी हो.
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call South All Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
0: This is the last and the final hour of the show. और मैं सरिता आपको बता दूं कि प्रोग्राम के इस आवर में भी पहले दो गाने मैंने चुने हैं महेश भट्ट साहब की ही फिल्मों के एक सड़क से और दूसरा फिल्म नाम से और बाकी के गीत मिले जुले रहेंगे कुछ फिल्में जो आज के दिन रिलीज हुई कुछ उनके गीत.
1: Like a radio.
2: Like a radio.
1: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Sarita Sabharwal.

0: बैक टू बैक दो गाने सुने महेश भट्ट साहब की ही फिल्मों के उन्होंने डायरेक्ट की थी ये फिल्में और पहला गीत इस सावर का था फ्रॉम द फिल्म सड़क इन 1991 एंड दूसरा गीत था फिल्म नाम से 1986 की फिल्म थी और इसके अलावा उन्होंने दिल है कि मानता नहीं बहुत सारी फिल्में हैं गुनाह इन 1993 स्वाभिमान था इनका एक ड्रामा सीरियल वो भी बहुत चला था एंड देन कभी कभी 1997 में इन्होंने एक ड्रामा सीरियल किया था ये डायरेक्टेड द टीवी सीरियल कभी कभी इन 1997 और फिल्मों की तो बात ही छोड़िए आशिकी देन दिल है कि माता नीत मैंने बता दिया आपको नाम सारांश जन्म बहुत सारी फिल्में इन्होंने बनाई हैं और आई एम लकी वन कि मैं उनसे मिल पाई और उनसे उनका इंटरव्यू भी किया था टीवी के ज़माने में सो बहुत अच्छी तरह से ये और करण जौहर के डैड यश जौहर जी दोनों एक साथ थे एंड फिल्म का नाम था आई थिंक डुप्लीकेट जिसकी लॉन्च के लिए वो लोग यहाँ आए हुए थे सो उनसे मुलाकात हुई और बहुत मज़ा आया था चलिए भी अब आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपका खैर मकदम है इफ़ यू हैव जस्ट जॉइन मी तो ये अच्छी बात नहीं है आपको तो चार बजे से लेकर सात बजे तक मेरा साथ देना होता है एवरी वीकेंड सैटरडे एंड संडे मैं आपकी सेवा में हाजिर होती हूँ तो नेक्स्ट वीक याद रखिएगा सैटरडे आपकी सेवा में हाजिर होंगी वैसे मैं अभी यहीं हूँ फॉर अनदर 46 मिनट्स यस इट्स 6:14 नियरली 6:15 नाउ तो सुनिए और भी बहुत से प्यारे प्यारे गीत आपकी सेवा में
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: India में कहीं भी पैसे भेजना चाहते हैं तो आज आपका 1 British sterling pound can get you कितने पैसे 127 rupees and 80 paisas against 1 pound और आप branch में जाके पैसे transfer कर सकते हैं online कर सकते हैं और SBI Yono mobile ऐप अगर डाउनलोड किया है तो ऐप के जरिए आप घर बैठे पैसे ट्रांसफर कीजिएगा टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive.
0: और पहले तो बता दूं कि next is artist of the week और इस week हमारे artist रहे शशि कपूर साहब जिन्होंने बहुत सी यादगार फिल्मों में काम किया है और बहुत से इतने मीठे-मीठे गाने उन पर पिक्चराइज हुए हैं और मैंने चुना है फिल्म मीली का ये गीत उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगा आफ्टर दीज वर्ड्स
1: दिस इज द Leica रेडियो नेटवर्क द लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क इन द यूके ब्रॉडकास्टिंग इन ग्रेटर लंदन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स ट्यून इन व्हेरेवर यू आर इन द वर्ल्ड बाय डाउनलोडिंग द Leica रेडियो मोबाइल ऐप लिसन लाइव और लिसन बैक टू योर फेवरेट शोज और लॉग ऑन टू leicaradio.com एंड लिसन वाया द वेबसाइट इफ यू लाइक व्हाट यू हियर डू टेल अस ईमेल अस info@leicaradio.com You can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Sarita Summerwall with the biggest classics on Leica Radio. This part of the show is brought to you by Anupama every day at 7:30 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar. One performer.
2: Countless personalities.
1: A whole universe of entertainment.
2: Sunil
3: Grover, live UK Tour 2026.
1: 29th October, Ova Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
3: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Babi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
1: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
3: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
1: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
4: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel. Your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras. We've got it all. Call Citybourne Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
3: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit Ambala.co.uk. For 15 years, Jannan has been part of your story across generations, across cultures, across every style. For everyday moments, special occasions, celebrations, and new beginnings. Because style has no age, no background, and no boundaries. 15 years of Jannan for you, for us, for everyone. The Jannan and J. Anniversary Sale, up to 70% off, starts on September the 25th online and on the 26th of September in stores nationwide. It's back. It's bigger and better.
1: ZTV and Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival.
3: Powered by Ram Jewelers and associated with UK Management College.
1: Join us on Sunday the 1st of November from 12 p.m. up until 8 p.m. at the Ram Gurya Centre in Leicester. With shopping, food, entertainment and plenty more. It's a Diwali celebration you won't want to miss.
3: See you there. Supported by Disha Premium, travel partner, Home and Away Holidays, exclusive charity partner, Go Dharmic.
1: For store bookings, call 07803 240580
3: or visit Diwali Shopping Festival. Festival.co.uk.

0: शशि कपूर एंड राखी पर ये गाना पिक्चराइज हुआ था. फिल्म का नाम था शर्मिली, 1971 की फिल्म. आप सभी प्यार करने वालों के नाम किया. और अगला गीत आ रहा है डेरी वैली वालों की तरफ से आप सबके नाम, लेकिन मैं आप सबके नाम भी कर दूं. थैंक यू सो मच. थोड़ा लेट ज्वाइन किया है पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए. संध्या बाब सर थैंक यू, वजाहत जो एलेक्सा पर हमेशा प्रोग्राम सुनते हैं, तनवीर साहब, मुनज़्ज़ा जी आप भी सुन रहे हैं प्रोग्राम, एंजॉय कर रहे हैं, मानसी, दिनेश पोपट जी एंड किशोर जी आप सभी का तय दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ. रजिंदर सिंह काला जी आप भी सुन रहे हैं, स्वीटी जी आप भी सुन रहे हैं. आज विमल रायन नहीं आई है, मैंने मिस किया आपको. एनीवे हो सकता है कि कहीं काम में मसरूफ़ होंगी. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. ये गीत भी बहुत खूबसूरत है, आप पसंद करेंगे जरूर.
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: देखिए ना, चलते चलते हम भी तो बिल्कुल करीब आ गए हैं न्यूज के और मेरे जाने का वक्त सुन।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: जी हाँ हितेन जी, आप भी सुन रहे हैं, प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं, थैंक यू आपका भी बहुत बहुत।
1: ये है लाइका रेडियो
0: और भी अगला गीत मैंने चुना है, फिल्म का नाम है दूर का राही और इसका रीज़न ये है कि ये फिल्म आज ही के दिन रिलीज हुई थी 20th of September in 1971, जिसमें किशोर कुमार, अशोक कुमार एंड तनुजा ने काम किया था। किशोर कुमार ने इसे डायरेक्ट किया था एंड संगीत भी किशोर दा का था एंड शैलेंद्र जी ने लिखे थे गीत। तो मुझे उम्मीद है ये गीत आपको ज़रूर पसंद आएगा।
3: दिस सुपरहिट ट्रैक इज ब्रॉट टू यू बाय टिल्डा बासमती राइस विद अ रेंज ऑफ ग्रेन्स एंड फ्लेवर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। यू कैन मेक एवरी मील memorable.
0: गाना बड़ा मशहूर हुआ था, किशोर दा एंड सुलक्षणा पंडित ने गाया था, बेकरार दिल तू गाए जा। और आज ही के दिन रिलीज हुई थी दुश्मन दुनिया का, शशि कपूर, जितेंद्र एंड सुमन लुथा ने इसमें काम किया था, महमूद साहब ने डायरेक्ट एंड अनु मल्लिक का संगीत था। 1996 में आई थी फिल्म।

कितने मेरे साथी ऐसे हैं जो अगर उनके हस्बैंड उनके पार्टनर कह दे हाँ तो हाँ में हाँ मिलाते हैं। और मेरे बहुत से साथियों ने सही जवाब दिया, सुलक्षणा पंडित और सिंगर।

0: किशोर दयान लता जी की आवाज़ें, लेकिन ये गाना पिक्चराइज किस पे हुआ? जितेंद्र एंड नीतू सिंह पर, और नीतू सिंह एंड राकेश रोशन पर। ये फिल्म बासु चटर्जी ने बनाई थी, नाम था फिल्म का प्रियतमा। एंड ये फिल्म भी आज ही के दिन 20th of September in 1977 में रिलीज हुई थी, जिसका संगीत दिया था राजेश रोशन जी ने।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors. Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: राइट, आपको बता दें कि इस वक्त करेंसी का रेट मार्केट में क्या चल रहा है, आपका एक पाउंड आपको क्या दिला सकता है, जल्दी से जानते हैं। अरे भाई, ये पेज क्यों गुम हो जाता है? राइट, इंडियन रुपीस अगेंस्ट वन पाउंड 128 रुपीस एंड 66 पैसा, अफगान अफगानीज 86.39, पाकिस्तानी रुपीस 371.34, बांग्लादेशी टका 164.50, श्रीलंकन रुपीज 443.1, Kenyan shilling 173.46 and US dollars 1.33.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Summerwall with the biggest classics on Leica Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: भाई, गोल्ड का रेट हर रोज बदलता जा रहा है। 105 पाउंड्स एंड 11 पेंस का आपको मिलेगा आज एक ग्राम सोना।
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
2: Hello. Wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by Morning Mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m, Leica Gold and Leica Radio Midlands.
1: Leica Radio.
0: जी हाँ, लाइका रेडियो नेटवर्क पर इस वक्त ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। मैं हूँ सरिता सबरवाल। अब देखिए ना, घड़ी की सुइयां बता रही हैं सरिता जाने का वक्त है। जाने से पहले इंतशाब आपका भी थैंक्स करना चाहूँगी, लिखती हैं एब्सोल्युटली लवली शो, थैंक यू। ललित पटेल जी, मानसी जी, अरविंद जी, भारती जी थोड़ा लेट आए हैं, कोई बात नहीं, और इसी तरह से मैं चाहूँगी आने वाले दिनों में भी साथ देते रहें। फरीदा गुलाम अली जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इंजॉय कर रही हैं प्रोग्राम। रोज़ी रगीना, आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगी। अब आज के प्रोग्राम का लास्ट गाना मैंने क्यों किया हुआ है, गाना बड़ा प्यारा है, मन की आंखें फिल्म का गीत है। दिल कहे रुक जा रे, रुक जा यहीं, क्या करूं, दिल तो मेरा भी है, रुक जाऊं, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो नेक्स्ट प्रेजेंटर कैसे आएंगे। बता दूं कि आज विंटेज गोल्ड में आपका साथ देने के लिए आए हैं अभिषेक, ही विल बी हियर टिल 10 o'clock। 10 बजे के बाद आप गोल्ड नाइट सुन पाएंगे, हमारी ओवरनाइट सर्विस, और फिर कल मंडे है तो मंडे वही सिलसिला शुरू होगा, काजल ब्रेकफास्ट शो में, और काजल के बाद आते हैं कौन, रवि शर्मा जी, रवि शर्मा जी के बाद बाली ब्रह्मभट्ट, और बाली ब्रह्मभट्ट के बाद सैंडी शाह, देन अनीसा नासिर, एंड दस, इसी तरह से सिलसिला ये आगे बढ़ता रहता है। मैं जाती हूँ, जाते जाते यही कहूँगी, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते, चहकते महकते रहें, आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ हों। और अभिषेक यहाँ आ रहे हैं तो दूसरी तरफ नीरज होंगे लाइका रेडियो पर एंड मैनचेस्टर रेडियो पर, जैसे ही आपका साथ निभाएंगे। Bye, take care, have a lovely and superb week ahead. Bye bye.
3: This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar. London, are you ready? Raghavendra presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
4: Hey, mere, hum safar, tum pa-
3: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
5: Dubai is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
6: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
7: Dubai is the place. 11,
6: 11. Call the Danube Properties London office today on 0203 963 5757 and book your meeting.
8: Danube 11, 11. Danube Properties. 11.
9: Caratino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
10: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping ka perfect destination. Kanish Idols ab available hain sabhi Falcon stores par. Onam Sandhya ke liye pre-bookings bhi shuru ho chuki hain. Falcon Snacks 300 grams ki full range sirf £1.99 each. Mustafa Dehraduni Rice 20 pounds sirf £13.49. Suhana Khaman Thokla 500 grams sirf £1.99 each ya 2 for £2.99. Tilda Grand Basmati 20 kg sirf £29.96. S Motiram Namkeen ab sirf £9.99. से शुरू और हर्जमैन बटर घी 20 केजी सिर्फ $10.99
11: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE54UN
12: Hi, I'm Kajal from Leica Radio. Fancy owning a property in Dubai? Well, your Dubai property journey could start right here in Leicester. Join me live at the Dubai Property Expo with Pods Real Estate and Danube Properties at the Marriott Hotel in Leicester on September 26th and 27th from 10 a.m. till 8 p.m. I'll be there live on Saturday the 26th from 1 p.m. till 4 p.m. So come down, say hello and discover Greens, Breeze and Shahrukhs with properties from 190,000 pounds and bookings from just £5,000. Plus, ask about free flyout offers to Dubai. Terms and conditions apply. Come and join me. Your Dubai property journey starts here.
13: Sarita Sabharwal with your weekend classics.
1: Are you listening? Leica Radio is now available across Coventry on DAB.

0: This is Leica Radio.
1: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
2: Join legendary singer Kavita Krishnamurthy.
1: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
2: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
1: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
2: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410
4: साउथ हॉल ट्रेवल एट होम प्रोटेक्ट
0: Save the date. Leica Radio brings you our first ever New Year's Eve bash. Leicester, 31st of December.
5: Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount. Plus a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
0: From Dudley to Handworth Wood, Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands. Bollywood romantic hits throughout the night. This is The Love Sound.